0: एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं. बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज. द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस.
1: जी
0: तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं. दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक. उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए. तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना काम डिवाइड कर लें.
1: जी
0: अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए. देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में. अगर आप जेडब्ल्यूई के लिए प्रिपेयर करते हो 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते. तो सबसे पहले आप जब भी घर पर प्रैक्टिस करते हैं
1: जी
0: हमेशा टाइमर लेके बैठें, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए,
1: ओ
0: वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए. एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फ़ोन करिए 7:23 या तो 7:24, हम रिलीजियसली फ़ोन को हाथ नहीं लगाते.
1: जी
0: बिकॉज सीधी सी बात है, बच्चा जो देखेगा वो करेगा. आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए.
1: बिल्कुल
0: तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फ़ोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए. जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हो और बाद में बच्चे को बोलते हो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, तो
1: बिल्कुल
0: बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग.
1: खुद तो
0: सो
1: देख रहे
0: सबसे
1: हैं।
0: पहले मैं बार बार काउंसलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू आर देयर रोल मॉडल्स. तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको. लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि एमसीक्यू उसके कौन से बुक्स अच्छे हैं. आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
0: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें. हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है, उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए. वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरिएबल थिंग.
1: जी
0: लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है. सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूँ कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस. यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग
1: बिल्कुल
0: मेरे
1: सही
0: साथ में
1: बात है।
0: पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना
1: सही
0: था.
1: बात है।
0: मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है. आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, नहीं नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा
1: पेट की
0: मेरा इंटरनल हीट उतना है. तो
1: समस्या।
0: स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक. अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज़्यादा रूटीन हो चुका है. हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड्स यूज़ करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो. मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज़ नई आती है, कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फ़ोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फ़ोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं. तो जैसे ही आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरल उसके बारे में सीखना भी होता है. इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिज़ाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो. एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीज़ें ले लो, वो सब में फिजिक्स है. वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करना पसंद है, लेकिन वो चीज़ों के बारे में आपको सीखना नहीं है. मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है. आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको.